बजा के सबका ध्यान खींच लो, सबको चूना लगा दो, सबको टोपी पहना दो, कोई साथ ना ले तो उसके खून से ही गो सींच लो। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान।

0: पकड़ो बेल दो, सूखी सूखी नफरतों में गरम गरम तेल दो, धीरे धीरे सारे बीमार खुद ही दौड़ जाएंगे, इनके मुद्दों के पीछे के मुद्दों को तुम स्टीम दो, खींचो नोचो पकड़ो बेल दो, सूखी सूखी नफरतों में गरम गरम तेल दो, धीरे धीरे सारे बीमार खुद ही दौड़ जाएंगे, इनके मुद्दों के पीछे के मुद्दों को तुम स्टीम दो।
1: 2018 है, देश को खतरा है, हर तरफ झाग है, तुम झाग के बीच हो, जोर से चिल्लाओ, सबको डराओ,
0: कोई साथ ना दे तो उसके सपनों पे तुम ईंट दो।
2: Listening to Dub Sharma, another track. Dub Sharma, another track from Gully Boy. It's called Jingostan.